0: ऊपर खाली है, ऊपर खाली है, ऊपर खाली है।
1: पौड़ी जैसे वे सुख पाइए सुसाहिब सदा संभालिए, जित की ता पाइए अपना सकाल पूरी क्यों खाली है। मंदा मुँह ना की चाहिए नमी नदर निहाली है, यूं साहिब नाल ना हारिए ते वे पासा ढाली है। पिछला है ऊपर खाली है, पिछला है ऊपर खाली है।

0: हरत महत दिवस रात दोए दाए दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू करमी आपो अपने के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुटे ना जिने नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो समराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदा।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जिक हिज्जै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिज्जै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्व नाम कथय कमन कर्म नाम वर्णत सुमत प्रभु दाता दातार परयो जाचिकिक शरणा मिलय दान संतरेन जे लग भवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार मह सब कल उदरीक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुरपार ब्रह्म भगत वशल सुन होत हौ निराश हृदय पतत पावन सुन आसा उरतार हौ अंतर जामी सुन कंपत हौ अंतरगत दीन कह दयाल सुन पै परम टार हौ जल धर संगम कै अफल सिंबल द्रुम चंदन सुगंध संबंध मलगार हौ अपनी करनी कर नरक न पावों ठौर तुमरे बिरद कर आसरो समार हौ अपनी करनी कर नरक न पावो ठौर तुमरे बिरद कर आसरो समार हौ सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
ਫਤਿਹ ਸੰਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਹ ਕੁਰਸੋਹ ਚਟੀਆ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ

सर्वर हंसा छोड़ न जाए। प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर। अकथ कथा

नार न पुरख कहो को कैसे। त्रिपमन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वशल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले पग तारे। अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुविधा खोवै, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवै। कहता पढ़ता सुनता एक, धीरज धर्म धरणी धर टेक। जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कौ जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूरत याद अनूप, नानक जाचै साच सरूप। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूरत

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुर होए दयालु, ता शरदा पूरी है, ता शरदा पूरी है। सतगुर होए दयालु, सतगुर होए

0: नानक ते मुखजले केती चुटी
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहण न जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्द

जैसे मन अच्युत कुटुंब ही सहत है, बंक तन सुदो बिल पैस तो है जी असै। मात पिता अच्युत ना बोले।

0: गए मसकत कार। नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह।
1: ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।

बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहिब।

तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब ते आवह सब ते आवह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर ते आवह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा।

आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुझ जी जन नानक तेन कुरबाणा हर ते आवह हर ते आवह तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोह बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन कौ आज संघरिय। पूरन होय हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहाऊ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रुन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार नृविकार नृलंब, आदि अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा।
सिगरे सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा,

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के

गुर की टेक रहौ दिन रात, जा की कोय न मेटै दात। उर तोहार विचार मुरार रमो राम, मन मोहन नाम जपीने। अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुर पूरै प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरि सत संग भये। एव कंचन चंदन कीने, नाव शे अखाट बोलह मुख आगर। मेरा हर प्रभ एव न पतीने, जन नानक हर हिरदय सद त्यावहो। यो हर प्रभ मेरा पीने, सतगुर सच्चा नाओ आख सुनाया। गुर मूरत सच थाओ ध्यान तराया। साध संगत असराओ सच सुहाया। दरगह सच न्याओ हुकम चलाया। गुरमुख सच गराओ शबद वसाया। मिटिया गर्भ गुआओ गरीबी छाया। गुरमत सच हियाओ अजर जराया। तिस बलिहारै जाओ सो पाणा पाया। गुरमत सच हियाओ सो अजर जराया। तिस बलिहारै जाओ सो पाणा पाया। सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु।

पशानाओ ताब हौ पतित तराओ गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पास ज्यो उदर भरओ कहो नानक प्रभ बिरद पछानाओ ताब हौ पतित तराओ।

हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरू।

सर्व कटा के दाते, सर्व कटा के दाते स्वामी देह सुपहरण खान, सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान।

जप राम नाम कल्याण सर्व कटा के दाते स्वामी देह सुपहरण खान सुरत मत चतुराई सोबा रूप।

रंग प्रंगन एक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे बस तेरा कर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर।

पिनर चुनाओ दुई कुदरत साजिया करा संडिठो चाओ दाता करता तू कुछ देवे करें तसाओ तू जानो ई सब सह दे लै सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ।

0: पड़ पड़ गड्डी लती है पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया का, पड़िया जेते बरस बरस पड़िया जेते मास, पड़िया जेते आर जा पड़िया जेते सांस। नानक लेख एक गल होर हौ मैं चखना चाख मगला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीर्थ भविया ते तो लवे।

कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन गार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन गार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी कप गोए कार।

0: तुझ बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच ता पर जानिए जो हृदय सच्चा खोए, कूड़ की मल उतरे तन करे खशा तुए। सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार, नाओ सुन मरहसी है ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तरत काया साध के विच दे करता भी हूं।

अंधे रेत ज्ञान में गुणे पाए परे मुरदार, ज्ञानी नचे बाजे बावे रूप करे सिगार, ऊंचे कूके वादा गावे जो दाका विचार, मूर्ख पंडित हिकमत तुझ संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा मगे मंगे मुख द्वार, जति सदा वै जुगत न जाने छड़ बहे करबार।

सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रे ओ सर्ब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सदबल।

0: जग तारन को अवतार बनाया, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
1: जाको मन ध्यान तारे, फिर तो सकल जोग, कबहु को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे, जाको सेव मुन गह ना तो जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा झूठ भेख किए फिर तो उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गौर रामदास को।
2: जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जिए की तपत मिटावै, जेह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै। सोई रामदास गुरु बलपन, मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर रग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरो नरो।
3: ब्रह्मादिक शिव छंद मुनि सर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव, इक तिल ताको मर्म न पावत। प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जन ताके दर्स समावत। तिसे त्याग आन को जाच है, मुख दंत रसन सगल कास जावत। हरे मन मूड सिमर सुख दाता, ना

हर नाम का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली कान गई। हर का नाम गुरमुख किन्ने बिरले त्याया,

अड़पुस्तक संध्या बादंग सिलपूस मगल समादंग मुख चूड़ बेपूखण सारंग त्रैपाल ते हाल बिचारंग गल माला तिलक लाटंग दो धोती बसर कपाटंग जय जानस ब्रह्म करमंग सा पोख निचो करमंग कहो नानक निचो त्यावे कहो नानक निचो त्यावे बिन

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समरकाय गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गौर ति अमरदास। राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम। सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई। जिस डिठै सब दुख जाय। तीग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया। हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तिन्ना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान तार के खालसा जी। बोलो जे वाहे गुरु। बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सवासां निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तार के खालसा जी। बोलो जे वाहे गुरु। बोलो जे पंजा तक तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु। वाहे गुरु। वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बल। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान। बोबेक दान विसाह दान भरोसा दान।

करे दयाल, कृपा करे ता साई कार करायसी। सो सेवक सेवा करी सुन हुकम नायसी, हुकम न होए प्रमाण ता कसमें का महल पायसी। कसमें भावे सो करे मनो चंदे।

पहला जेकर सूतक मने है सब ते सूतक गोए गोगे ते लकड़ी अंदर कीड़ा गोए जेते दाने अनके जिया भाज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई।